अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। रविंद्र सिंह ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। उसके बाद आप सुनेंगे 8:02 पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। गौतम गौड़ आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने 9:02 पर। वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:02 पर। लिपिका दास आपके साथ रहेंगी।

बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन सकते हैं 11:02 पर रंजन अनेजा के साथ। इसके बाद होगा बिंदास बोल 1:02 पर। आशियाना कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:02 पर। श्वेता शर्मा ये कार्यक्रम लेकर आएंगी। हमारे श्रोता सुन सकते हैं रेडियो डॉक्टर 3:00। शैली भंशांजलि ये कार्यक्रम आपके बीच लेकर आएंगी। और 4:02 पर आप सुनेंगे अल्फा जैन। इसके बाद आप सुनेंगे सिटी लाइट कार्यक्रम 5:02 पर। मैसेज मसाला मिक्स आप सुन सकते हैं 6:02 पर वीर दमन सिंह के साथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन 0 होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कन्नडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन

0: पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है ओर्मूज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: Catch the rain. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rainwater harvesting techniques in our homes and offices.

प्रोग्राम टेको हुनेको उदित नारायण र कविता कृष्णमूर्ति लगा वास्ते फिल्म असे पृथ्वी गीत लिखे हुए नितिन रायकवार और म्यूजिक दिए हुए विजु शाह।

अर्गन्ती आकुहुनी वपनलोकी किशोर कुमार र लता मंगेशकर लका वास्ते फिल्ममा से प्रेम पुजारी आरो एउटा गीत करेने लेखिकिन पठाएसे सरीजन कार्बियन लोङपरा जोगेन्द्र रोङपी सोनाली एङटिपी आरो धरमकिरी रोङपी तखानिटु गाना डेडिकेट करि दिएसे अथोङ जमिर बिरेन हन्से चुबाके जमिर दोन मिन्छो फागु उरां हेकुतो जिमो इचाकतो अचुमी केक्रेलेतो लेवोता लोहे माया थापा नितुल बोरा ओखरोशान प्रेमिका तेवा रमेश पात्र रोकुविले मेता शिकारी रोंगपार तिजामो लोथा उर्मिला तमुली वेरेनिका आरजे दिदी कोगिना लिखेसे वांगपा यम आर जे दीदी और जुबेनी और अपनी के कोई ना लिखी है वेल थैंक यू सो मच लिखी कि ना पठाई दिया कारण तो गाना इतना शुनी लगे

एफएम स्टूडियो घड़ी में समय हुआ है 1:14। लीजिए पेश है अभी तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर, जहां वे बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, साथ ही वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्वभर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। गोवा सरकार ने 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के कैसीनो गेमिंग क्षेत्रों में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों पर व्यापक कार्रवाई की योजना की घोषणा की है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। हॉकी इंडिया देशभर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। तो ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। और खास बात यह है, आज बहुत खास दिन है। जो लोग हमें जानते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम को, उनको पता है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे महीने में सिर्फ एक ही शुक्रवार को आता है, और वो होता है महीने का तीसरा शुक्रवार। तो हम आपसे बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले आपको ये याद करा देना था, आपकी आपकी याददाश्त में बैठ जाए कि आज जो पहले आप कार्यक्रम सुनते हैं मेरे वाला सॉन्ग, वो नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट वगैरह अपनी भूल जाइए, आपकी पसंद ना या फिर नापसंद, यानी मेरी पसंद का कोई गाना होगा जरूर बजाएंगे प्रोग्राम के मध्य में। खास तौर से जो पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दें कि जो ये कार्यक्रम शुरू होगा थोड़ी देर बाद, जिसका नाम है बिंदास बोल, उसमें आपने करना क्या है, उसमें आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपने मैसेज के द्वारा करना है। आपके कुछ मेल्स मेरे पास आए भी हुए हैं, इसमें आपने हमारे सभी आरजेस की तारीफों के पुल बांधने हैं, और शिकायतें तो आप वैसे भी करते ही रहते हैं। खैर, मैं हूं आपके साथ रंजन, ढेर सारी होंगी आपके साथ बातें, लेकिन वो सब होगा उससे पहले एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, लौट के आएंगे, यूं जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्ते, मेरा नाम है सीमा बजाज और मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी में एक वॉलंटियर हूँ। हर सप्ताह हम आपके लिए कर्क रोग यानी कैंसर के बारे में कई जानकारियाँ लेकर के आते हैं और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि समय रहते यदि डायग्नोज हो जाए तो 100% रिकवरी भी संभव है। मेरी वार्ता के बाद यदि आपको कुछ और जानकारी की जरूरत हो तो आप हमारी हेल्पलाइन 9910516556562 पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है तो आप हमारे कैंसर डिटेक्शन सेंटर जो कि बाबर रोड पे है जाकर के निशुल्क सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की वार्ता ICS द्वारा आप तक लाई जा रही है। आज हम बात करेंगे मेलानोमा यानी के त्वचा के कैंसर के बारे में। मेलानोमा क्या है? मेलानिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी शरीर की कुछ कोशिकाओं में उत्पन्न होता है जिससे हमारी त्वचा को रंग मिलता है। तो कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ज्यादा गोरे हैं, कुछ लोग ज्यादा काले हो जाते हैं, तो वो ये सब क्यों होता है? ये हमारी कोशिकाओं में से एक रंग प्रोड्यूस होता है जिससे हमको ये रंग मिलता है और उसको हम मेलानिन कहते हैं। आज क्योंकि हम मेलानोमा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको और कुछ जानकारी दे रही हूं। मेलानोमा क्या है? मेलानोमा, जिसका अर्थ है काला ट्यूमर, त्वचा के कैंसर का सबसे खतरनाक प्रकार है। ये तेजी से बढ़ता है और शरीर के किसी भी अंग में फैलने की क्षमता रखता है। मेलानोमा मेलानोसाइट्स नामक त्वचा कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। ये कोशिकाएं मेलानिन नाम गहरे रंग द्रव्य का उत्पादन करती हैं, जो त्वचा को उसका रंग प्रदान करती हैं। अधिकांश मेलानोमा काले या भूरे रंग में होते हैं, लेकिन कुछ गुलाबी, लाल, बैंगनी या त्वचा के रंग के भी हो सकते हैं। लगभग 30% मेलानोमा मौजूदा तिलों में ही शुरू होते हैं, लेकिन बाकी सामान्य त्वचा में शुरू हो सकते हैं। तिल, सबको पता है तिल क्या होते हैं, है ना? तिल वही जो कहीं कहीं पर तो हमारी सुंदरता का प्रतीक भी माने जाते हैं, और ज्योतिष विद्या में भी कहा जाता है कि तिल किसी ना किसी शरीर के हिस्से में हो तो वो हमारे लिए बहुत शुभ या अशुभ भी होता है। तो हम तिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपके शरीर पर मौजूद तिलों की संख्या से ही मेलानोमा होने के जोखिम का अनुमान लगाया जा सकता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या आप मेलानोमा त्वचा कैंसर होने के उच्च जोखिम वाले समूह में हैं भी या नहीं। मेलानोमा कितना आम है? मेलानोमा सभी त्वचा कैंसरों में केवल लगभग 1% का हिस्सा है, लेकिन त्वचा कैंसर में होने वाली अधिकांश मौतों का कारण यही है। ये 30 वर्ष से कम आयु की युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं में से सबसे आम कैंसरों में से एक है। पिछले 30 वर्षों में मेलानोमा के मामलों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि पराबैंगनी यानी कि यूवी किरणों के बढ़ते स्तर में संपर्क आने आने से मेलानोमा के मामलों की संख्या में इस जीव विधि के मुख्य कारणों में से एक है। शरीर में मेलानोमा कहां कहां हो सकता है? शरीर में किसी भी हिस्से में मेलानोमा हो सकता है। ये आंखों और आंतरिक अंगों में भी विकसित हो सकता है, लेकिन पुरुषों में धड़ खासकर पीठ के ऊपरी हिस्से में मेलानोमा होने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं में पैरों में मेलानोमा होने की संभावना अधिक होती है। मेलानोमा के लक्षण क्या होते हैं और मेलानोमा की पहचान कैसे करें, ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती मामले मेलानोमा का इलाज आसानी से हो सकता है। मेलानोमा तिल पपड़ीदार धब्बे, खुले घाव या उभरे हुए दानों के रूप में दिखाई दे सकता है। त्वचा पर दिखने वाले किसी भी धब्बे का मेलानोमा होने की चेतावनी संकेतों को जानने के लिए ABCD मेमोरी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ए यानी कि एक समरूपता, एक आधा भाग दूसरे आधे भाग से मेल नहीं खाता। बी क्रम यानी कि किनारे चिकने नहीं है। सी रानी के रंग या कलर, कलर रंग धब्बेदार और असमान है, जिसमें भूरे काले धूसर लाल या सफेद रंग के विभिन्न शेड्स हैं। डी व्यास यानी कि डायमीटर, ये पेंसिल के इरेजर की नोक 6 mm से भी बड़ा है। ई यानी इवॉल्व मतलब विकसित हो रहा है, ये धब्बा नया है या इसके आकार आकृति में रंग का बदलाव होता रहता है। कुछ मेलानोमा ABCDE नियम में फिट नहीं होते, इसलिए अपने डॉक्टर को किसी भी ऐसे घाव के बारे में जरूर बताएं जो ठीक नहीं हो रहा, असामान्य उभार या चकत्ते हो या आपकी त्वचा में किसी भी मौजूदा तिल में कोई भी बदलाव हुआ हो। मेलानोमा को पहचानने का एक और तरीका है यानी कि बदसूरत बत्तख का निशान। वो अगली डकलिंग की कहानी हम सबने सुनी है ना, जिसमें सब बत्तखों के रंग तो एक जैसे थे लेकिन एक थोड़ा अलग दिखता था, इसी का नाम है बदसूरत बत्तख का निशान। अगर आपके शरीर पर कोई तिल बाकी तिलों से अलग दिखता है तो यह बदसूरत बत्तख का निशान है और आपको किसी त्वचा विशेषज्ञ को अपनी जांच करानी चाहिए। मेलानोमा किस कारण से होता है? अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि मेलानोमा की प्रमुख जोखिम कारक सूरज की रोशनी का अत्यधिक संपर्क है, खासकर युवावस्था में होने वाला सनबर्न। आंकड़े बताते हैं कि 86% मेलानोमा सूर्य की यूवी रेस के कारण होता है। सूरज त्वचा कैंसर का कारण कैसे बनता है? यूवी रेस के संपर्क में आने से कोशिकाओं के डीएनए का नुकसान पहुंचता है, जिसके खास जीन्स में बदलाव आता है जो कोशिकाओं के विकास और विभाजन को प्रभावित करते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपकी त्वचा का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है और वे कोशिकाएं प्रजनन करने लगती हैं। और एक वजह है जो हिंदुस्तान में लागू नहीं है, वो है टैनिंग बेड। यहाँ पर टैनिंग बेड का बहुत ज्यादा बंदोबस्त इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। हालांकि मेलानोमा किसी को भी हो सकता है, लेकिन निम्नलिखित लक्षणों वाले लोग इस बीमारी के होने की का खतरा अधिक होता है। मेलानोमा का व्यक्तिगत इतिहास, परिवार में मेलानोमा का इतिहास, गोरी त्वचा, झाइयां, सुनहरे या लाल बाल या नीली आंखें, अत्यधिक धूप में रहने से जिसे फफोलेदार सनबर्न भी शामिल है, इक्वेटर के पास या अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में रहने से यूवी रेज के संपर्क में ज्यादा आने से खतरा बढ़ता है, कई तिल विशेषकर असामान्य तिल और वीक इम्यून सिस्टम से भी आपको इसका खतरा हो सकता है। यदि आपके शरीर में कोई तिल या अन्य धब्बा संदिग्ध प्रतीत होता है तो आपका डॉक्टर इसे निकालकर एक बायोप्सी कर सकते हैं। त्वचा की बायोप्सी रिपोर्ट में मेलानोमा कोशिकाओं का प्रमाण मिलने के बाद डॉक्टर द्वारा अगला कदम ये निर्धारित करना होता है कि मेलानोमा फैला है या नहीं, इसे स्टेजिंग कहते हैं। निदान होने के बाद मेलानोमा के कई कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि ये कितनी गहराई तक फैला है और माइक्रोस्कोप के नीचे इसका स्वरूप कैसा है। ट्यूमर की मोटाई परिणाम का अनुमान लगाने में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपके मेलानोमा का इलाज मेलानोमा के चरण और आपके सामान्य स्वास्थ्य पर निर्भर रहेगा। मेलानोमा का मुख्य उपचार आमतौर पर सर्जरी ही होता है। इस प्रक्रिया में कैंसर और उसके आसपास की कुछ सामान्य त्वचा को काटकर निकाल दिया जाता है। हटाई जाने वाली स्वस्थ त्वचा की मात्रा त्वचा कैंसर के आकार और स्थान पर निर्भर करती है। आमतौर पर मेलानोमा को सर्जरी द्वारा त्वचा विशेषज्ञ के क्लिनिक में ही लोकल एनेस्थीसिया के साथ भी निकाल दिया जाता है। अधिक गंभीर मामलों में सर्जरी के अलावा यह सर्जरी के स्थान पर अन्य प्रकार के उपचार की भी आवश्यकता हो सकती है। मेलानोमा में सर्जरी हो सकती है, लिम्फोनेडेक्टॉमी हो सकती है, मेटास्टेसिस का उपयोग भी हो सकता है और लक्षित कैंसर से चिकित्सा भी की जाती है। विकिरण चिकित्सा द्वारा भी इसका इलाज होता है। इम्यूनोथेरेपी आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने में मदद करने में के लिए भी उत्तेजित करता है। त्वचा कैंसर से पीड़ित कुछ मरीज नैदानिक परीक्षण में भाग ले सकते हैं। नैदानिक परीक्षण एक शोध कार्यक्रम है जो रोगियों के साथ किसी चिकित्सा उपचार दवा या उपकरण का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। त्वचा के अधिकांश कैंसर का इलाज समय रहते ही संभव है, बशर्ते वे फैल न सके। हालांकि मेलानोमा के गंभीर मामले जानलेवा हो सकते हैं। त्वचा के कैंसर की जितनी जल्दी पता लगाकर उसे हटाया जाए, पूरी तरह से ठीक होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अपने आप को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? धूप से बचें और छाया में रहकर, खासकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच। जब भी संभव हो किनारे वाली टोपी, धूप का चश्मा, लंबी आस्तीन वाली कमीज और पैंट पहने। त्वचा की सुरक्षा के लिए SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करें और इसे बार बार लगाएं, आमतौर पर 1.5 घंटे, या अगर आप तैर रहे हैं और पसीना आ रहा हो तो और भी जल्दी जल्दी लगाएं। सनस्क्रीन युक्त बाम का इस्तेमाल करें, लिप बाम का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों और 6 महीने से अधिक उम्र के शिशुओं को सनस्क्रीन लगाना न भूलें। खाने पीने में कहा जाता है कि ब्लैक टी के निस्बत ग्रीन टी की ज्यादा पॉलीफिनॉल होते हैं तो वो ज्यादा अच्छी है। सब्जियों का अधिक सेवन करें, सप्ताह में कम से कम एक बार मछली का सेवन भी करें। त्वचा कैंसर के रोकथाम में एंटीऑक्सीडेंट की सुरक्षमता प्रभावों को लेकर त्वचा विशेषज्ञों के बीच वर्षों से बहस चल रही है। हाल में ही शोध के ताजे खाद्य पदार्थों के एंटीऑक्सीडेंट की सेवा इस बीमारी को न होने के बीच संबंध पता चला है। ये तो थी आज की वार्तालाप। आशा है आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा और आप इस पे ध्यान भी देंगे। इसी के साथ मेरी वार्ता समाप्त होती है। नमस्ते, भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात। कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम शुरुआत होने जा रही है उसकी, जिसका नाम है बिंदास बोल। तो जो लोग आज पहली दफा हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उनको हम बता दें कार्यक्रम एक्चुअली है क्या। इस कार्यक्रम में आप देते हैं फीडबैक। रेनबो के जितने भी कार्यक्रम आप सुनते हैं उनमें से जो आपको पसंद आते हैं, जो नहीं पसंद आते हैं, कुछ आप बदलाव चाहते हैं, कुछ आप एडिशन ओमिशन आप उसमें जो भी बदलाव चाहते हैं या फिर हमारी तारीफों के पुल बांधना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कुछ एक ईमेल्स हमारे पास आई हैं, हमारे ईमेल पे आप बाकायदा मेल्स करते रहते हैं। इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं अगर अभी अभी जुड़े हैं तो, डोंट यू वरी। हमारा मैसेज नंबर है 9868107070। और जो पहला ईमेल हम लेने जा रहे हैं वो हमें लिखा है इरशाद जहान ने मुंबई से, और लिखा भी तो क्या खूबसूरत लिखा है, जरा गौर फरमाइएगा। कुछ एक पंक्तियां इन्होंने एक तुकबंदी करने की कोशिश की है, बड़ी खूबसूरती से लिखा है, जरा सुनिएगा। मेट्रो चैनल बन गया अपना रेनबो चैनल, क्या क्या बताता, क्या क्या सुनाता, सुबह सुनो तो मन भक्ति भावना में डूब जाता। ये हमारे सुबह के कार्यक्रमों की बात कर रही है जहां पे भक्ति का कार्यक्रम सुबह 6 बजे होता है। फिर समस्याओं को सुलझाता, सूचना देता, नए पुराने गानों की टेस्टी खिचड़ी बनाता, मुंह में पानी आ गया अंग्रेजी गानों के साथ खूब थिरकाता, बॉलीवुड खबरों का हलवा खिलाता, कभी डॉक्टर बुलाता, कभी मनोवैज्ञानिक, रोजमर्रा की परेशानियों का हल निकालता, यूथ का खास ख्याल रखता, ज्ञान देता, ट्रिपल एम के द्वारा खूब बातें बनाता, म्यूजिक मस्ती से सब रिकॉर्ड बनाता, गोल्ड गाने सुनाकर आत्मा तृप्त करता, प्यारी गजलें सुनाकर संगीत पूरा करता। वाह इरशाद जहां जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर ये पंक्तियां आपने लिखी हैं तो उसके लिए आपको डबल तारीफ आपके लिए। इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ, आप चाहें तो मैसेज कीजिए, कुछ एक मैसेज आना भी चालू हो गए हैं। आप सुन रहे हैं बिंदास बोल जो आता है महीने के तीसरे फ्राइडे को, शुक्रवार को, और आज देखिए आज तीसरा शुक्रवार है महीने का।

देखिए आपके बिंदास मैसेज हमारे पास पहुंच रहे हैं, जैसे हमारे पास लेके भेजा दिनेश नहार सिंह ने गोकुलपुरी दिल्ली से, कहते हैं कि सबकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है लेकिन फेवरेट आरजे सुजाता रथ हैं और वेद अमन, इन्होंने साथ में दो नाम लिख के भेजे हैं। कुछ लोग अभी भी मेरा वाला सॉन्ग समझ के मैसेज कर रहे हैं, तो आज ये वो कार्यक्रम नहीं, हमने आपको पहले ही बताया। और सुबह 6 से 7 सुप्रभात कार्यक्रम आता है, ये हमेशा सुनते हैं पंकज अमरावती से। एक बार फिर से पुनः इन्होंने मैसेज करके भेजा है और इसके अलावा और भी ढेर सारे मैसेजेस लेंगे, लेकिन यहाँ पर समय है एक ईमेल लेने का। बहुत विस्तार से इन्होंने ईमेल भेजी है, नाम है प्रिंस, और प्रिंस बहाल या प्रिंस बहल, आप हसनपुर से लिखते हैं, अमरोहा उत्तर प्रदेश से आपने अपना एड्रेस लिखा है, और कहते हैं कि रेनबो को ज्यादा तो नहीं पर टाइम टू टाइम काफी प्रोग्राम सुनता हूं, स्पेशली संडे का रेनबो जीनियस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए मैं अपने बिजी रूटीन से टाइम जरूर निकालता हूं।

मैं मार्च 2016 से इस प्रोग्राम के साथ बिना इसको स्किप किए हुए इसके साथ कांटेक्ट में हूँ या कनेक्ट करता हूँ, ऐसा लिखते हैं, और इसमें किए गए क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करता हूँ। ये बड़ी खास बात है, आप देखिए इतनी मेहनत करते हैं 2016 से, तो अब तो कई कापियां भर गई होंगी, कई नोटबुक्स, बिकॉज बड़े सारे सवाल आपने लिखे होंगे। नहीं, इतना तो नहीं है ना, बताइएगा कितने कितने, एक ही कॉपी है, ज्यादा है। और ये कहते हैं कि इस प्रोग्राम में बार बार मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूं, के बारे में मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं। पहला कि इस प्रोग्राम में सिर्फ आरजे एक दो बार ही क्वेश्चन रिपीट करते थे, और अब आंसर के लिए सिर्फ 5 से 10 सेकंड का टाइम देते थे, यानी पहले, और जो बहुत अच्छा था। लेकिन अब कुछ आरजेज हैं जो ज्यादा समय देते हैं और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, और इससे ठीक नहीं रहता, वो लोग सर्च कर लेते हैं और उसका आंसर देते हैं, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। और पूछ रहे हैं कि पहले इस प्रोग्राम में एक क्वेश्चन का आंसर देने पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछे जाते थे, सवाल पूछे जाते थे, पर अब आरजे ऐसा नहीं करते हैं, वो अगला सवाल पूछ लेते हैं, चाहे प्रीवियस सवाल का जवाब आपने दिया हो सही या फिर गलत, वो कॉलर को डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। पहले एक क्वेश्चन को गलत आंसर करने पर कॉलर को दूसरा मौका नहीं मिलता था, जो बिल्कुल सही था। और कहते हैं कि पहले इस प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का लेवल हाई होता जाता था, तो काफी अच्छा था, पर अब मोस्टली रिपीटेड और इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये आपके लिए इजी होगा, हो सकता है किसी और के लिए बहुत मुश्किल हो ना, अपने अपने सामान्य ज्ञान या फिर नॉलेज के बेस पे भी डिपेंड करता है, बट ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हैं। और आगे लिखते हैं इसमें, लिसनर्स अब भी और पहले भी नाम चेंज करके पार्टिसिपेट करते थे, जो सही नहीं है। ये तो हम आपकी बात मानते हैं, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी आपकी ईमेल शामिल की थी जहां आपने बात कही थी। हम देखिए रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अगर कोई नाम चेंज करता है तो नहीं करना चाहिए अपने नाम से बाकायदा प्रोग्राम में, मगर उसमें ये हो सकता है कि लोग जो है ना बार बार पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो एक लालच होता है, एक तरह का प्यार है आकाशवाणी के प्रति, तो इसे हम थोड़ा लाइटली ही लें तो अच्छा है, वरना आप कहें तो इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, आप अगली मेल में बताइएगा। और आप कह रहे हैं कि मैंने पिछली दफा आपके सवाल का जवाब दिया था, तो आपको मेरी बात, मैंने कुछ पूछा था कि आपको ऐसे कैसे पता चल जाता है कि भाई दूसरे लोग जो हैं वो नाम बदल के करते हैं, तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो ठीक है, मैं उसके लिए आपको उस दिन भी मैंने कहा था, मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको हर्ट हो, ये बिंदास बोल है, जैसे मैंने बिंदास बोला वैसे ही आपने बोला, और आपने बाकायदा दोबारा मेल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाता यूं ही बनाए रखिएगा, हम इसी तरह से आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और आपके बड़े सारे सवाल हैं, आपकी बातें बिल्कुल अच्छी लगी। देखिए ऐसा भी होता है कि अगर एक सवाल पूछते हैं और उसके बाद वो सही जवाब नहीं दे पाता तो दूसरे कॉलर पे जाते हैं, फिर तीसरे पे, ऐसा करते थे, डिपेंड करता है, हर एक आरजे का अपना तरीका होता है कई दफा, और कई दफा ये होता है कि अगर सभी पहले सवाल पे बोल्ड होते जाएं तो दूसरा सवाल पूरे कार्यक्रम में आएगा ही नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो मिला जुला के हर आरजे अपने तरीके से इस कार्यक्रम को जरूर करना चाहेगा, और इसका आनंद लीजिए, बाकायदा इसमें नॉलेज बढ़ती है, काफी ज्ञान बढ़ता है इसके अंदर, ऐसे सवाल होते हैं, और कई बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं उससे जुड़े बकायदा बहुत सारे सवाल इसमें होते हैं। और क्या कहा आपने इसके अलावा, मुझे जो लगा मैंने कहा, और थैंक यू सो वेरी मच, आपकी बात हमने सुनी। प्रिंस, इसी तरह से आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आकाशवाणी को यूं ही सुनते रहेंगे। अब ही सब के लिए एक पुरानी फिल्म से, शब्बीर कुमार साहब की आवाज में गाना मैं ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि कार्यक्रम है बिंदास बोल, और इस कार्यक्रम के अंदर इस गीत के बोल भी हैं, बोलो बोलो, बिंदास होके बोलिए और एंजॉय कीजिए म्यूजिक आकाशवाणी रेनबो पर।

0: राजीव कपूर अभिनेता इस फिल्म में थे। बहुत ज्यादा उन्होंने फिल्में नहीं की, लेकिन दिस इज वन ऑफ हिज फिल्म्स। खैर, शब्बीर कुमार साहब की एक बेहतरीन आवाज में आपने गाना सुना। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं। आप यहीं हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आप सुन रहे हैं बिंदास बोल। मैसेज करने के नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 9868107070, दैट्स 9868107070। इस पर व्हाट्सएप कीजिए अपना मैसेज, जुड़ जाइए आकाशवाणी के संग।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉल

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिंदास बोल। ये कार्यक्रम जो महीने के तीसरे शुक्रवार को आता है, जहां पर आप अपनी बात रखते हैं, आपको कौन से प्रोग्राम्स पसंद हैं, कौन से प्रोग्राम्स में आप क्या चेंजेस चाहते हैं, या कोई अगर शिकायत है तो वो भी आप बिंदास होके लिखते हैं, ईमेल करते हैं। ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है feedback@gmail.com। एक दिस इज वन वर्ड, feedback@gmail.com। तो इस पर आप हमें ईमेल करिए, और उसके अलावा मैसेज करने के लिए तो नंबर मैं आपको कई दफा बता ही चुका हूं। और पटियाला से हमारे पास मैसेज आया है, JS गिल साहब का। लिखते हैं कि इन्हें प्लेट कूल और प्रोग्राम अच्छा लगता है, उसके अलावा इन्हें लिपिका मैम, प्रियंका मैम, हरप्रीत कौर मैम भी बहुत अच्छे शोज लेकर आती हैं। राइट, थैंक यू सो वेरी मच गिल साहब। और भारती मैम का मैसेज वाला शो अच्छा लगता है। अनुभव ने लिखा है बिहार से। इसके अलावा बड़े सारे मैसेज हैं। मनमोहन सिंह लिख रहे हैं यूपी रामपुर से, और मंडवा हसनपुर गांव से लिखते हैं बिंदास बोल प्रोग्राम में। कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बात से बने बात प्रोग्राम दोबारा चालू किया जाए, और सभी आरजी अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन एक गीता मैम से थोड़ी सी शिकायत है। वो मेरे वाला सॉन्ग प्रोग्राम में मेरा गाना प्ले नहीं करती है, और ना ही मेरा नाम ऑन एयर करती है। काफी बार मैंने देखा है। ओके मनमोहन जी, ऐसा रहा होगा, हो जाता है, क्योंकि आप जैसे इस समय स्क्रीन पे मैं मैसेज देख रहा हूं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ डांस करते हुए मैसेजेस आ रहे हैं, और ऐसे में ना कई दफा मैसेज नहीं आपको मिल पाता। और एक कार्यक्रम में समय की पाबंदी की वजह से सभी मैसेजेस को पढ़ पाना मुश्किल होता है, या यूं भी कह सकते हैं मुमकिन नहीं होता है। तो चांस की बात है आपके कुछ एक प्रोग्राम्स में आपका नाम या गाना शामिल नहीं हुआ, लेकिन दिल छोटा ना करें, आप कोशिश लगातार करते रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो आसमान में, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं ना, कि मतलब इट्स अबाउट कीपिंग योर होराइजन बिग। यानी जिस तरह से आप जुड़े, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, कि आप प्रयास करते रहिए, किसी दिन आपका प्रोग्राम में मैसेज भी लिया जाएगा और आपका गाना भी बजाया जाएगा।

मगन होके हमारे सभी आरजेज, हमारे सभी प्रस्तुतकर्ता और जितने भी हमारे डिजाइनिंग के लिए जितनी भी टीम बैठी है, इंजीनियरिंग टीम बैठी है, या फिर हमारे जितने भी अफसर लोग बैठे हैं जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं या फिर किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनका पूरा समर्पण रहता है कार्यक्रम्स प्रोग्राम्स के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति। और इसी तरह से आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस और ईमेल की हम राह देखते रहते हैं। जैसे सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, अनसिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से लिखा है। इन्होंने मैसेज भी बकायदा मुझे ये रिमाइंड करने के लिए अभी 4 मिनट पहले मैसेज भी किया कि हमने मेल किया और आपने अभी तक नहीं लिया। तो लीजिए, आपकी बात हम पूरी कर देते हैं। आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम जी आपको। और कार्यक्रम बिंदास बोल को दो प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। हम इतनी मेहनत से विस्तार से कार्यक्रमों के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, लेकिन गीतों के कारण हमारी सारी प्रतिक्रिया शामिल या विस्तार से शामिल नहीं हो पाती है। कार्यक्रम में गीत एक दो ही शामिल करें, और क्योंकि गीत बजाने ना तो जरूरी है और ना ही आपकी मजबूरी है। और पूर्ण विश्वास है आप हमारे इस अनुरोध पर जरूर ध्यान देंगे। कोटि कोटि धन्यवाद। अब देखिए, जैसे ही मैं कहूंगा ना, चलो मैंने आपकी बात मान ली, मैं दो ही गाने बजाऊंगा, मैं सारी बातें करूंगा, तो बाकी लोग थोड़े से नाराज हो जाएंगे। देखिए, एक समय में हमें 10-20 लाख लोग सुन रहे होते हैं, ऐसा मुझे कभी पहले पता चला था। हो सकता है करोड़ों की संख्या में भी सुन रहे हो, तो इतने सारे लोगों को एक साथ खुश रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इट्स एन इंफोटेनमेंट चैनल जहां पर इंफॉर्मेशन भी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और गानों से बेहतर एंटरटेनमेंट तो आपको कौन ही दे सकता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इस कार्यक्रम में जितना समय हो हम ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस लें, आपके ईमेल्स लें, हमारा कोशिश रहती है। मोनिका देहरादून से लिखती है, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मुझे तो सारी आरजेस का बोलने का अंदाज सबसे प्यारा लगता है, हमारी सुबह एफएम रेनबो से होती है और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली के और दिल के तराने, वाह ये भी ऐसे भी हो सकता है, दिल्ली के तराने दिल के तराने गाने नए पुराने, हेलो डॉक्टर और मैसेज मसाला, ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद है और उनके लिए मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। बाकी मुझे निखिल सर की आवाज बहुत पसंद है, आपकी आवाज भी उनसे बहुत मिलती है, मोनिका देहरादून से लिखती है। वाह, थैंक यू सो वेरी मच। तो आप इसी तरह से आगे भी जुड़े रहें और बाकी आरजेस को भी सुनते रहें, ये हमारी आपसे उम्मीद रहेगी। सर, मैं मनीष खाटी हूं और मैं तहसील बैवारा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। मुझे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वास्थ्य पर आधारित होता है, इसलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें बहुत से आपको रोगों के रोकथाम के बारे में या फिर डॉक्टरों से बहुत सी सलाह मशवरा, बहुत सी जानकारी मिलती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और आपके बहुत काम आ सकती है। सत्येंद्र मौर्य लिख रहे हैं दिल्ली से, करण विहार से, और ये एक फिल्म का गाना सुनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं 1:43 पर। तो यानी आप अभी अभी जुड़े हैं, आज मेरे वाला सॉन्ग नहीं चल रहा है। इसका क्या कारण है? वो कारण ये है कि महीने के 3rd शुक्रवार को वो कार्यक्रम नहीं आता है, कार्यक्रम आता है बिंदास बोल, जो इस समय आप सुन रहे हैं।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में जिसका नाम है बिंदास बोल। मैं हूं आपके साथ रंजन और हमारे पास एक ईमेल और आई हुई है विजय कुमार नामदेव की दिल्ली से और लिखते हैं नमस्ते जी, 21 जून का और कार्यक्रम चंद्रानी मुखर्जी द्वारा बहुत अच्छा लगा और इसके अलावा योग डे, फादर्स डे और म्यूजिक डे, ये सारे कार्यक्रम कमाल धमाल धमाकेदार प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स और म्यूजिक मस्ती जिन्होंने प्रेजेंट किया और मसाला मैसेज मसाला मिक्स योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी और इसके अलावा एक गाना सुनाया था लगन लगी सॉन्ग जो हमने पहली बार सुना तो दिल को छू गया और सभी मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम और म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में चुन चुन कर कमाल धमाल के सॉन्ग सुनाए जो सभी हमको बहुत पसंद हैं। उनका गला भी खराब था फिर भी इतना अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट किया उसके लिए चंद्रानी मुखर्जी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और रेनबो की पूरी टीम को भी हमारी तरफ से थैंक्स। जय माता दी। आगे लिखते हैं विजय कुमार नामदेव। तो विजय कुमार जी आपकी ईमेल हमारे पास पहुंची उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतनी प्यारी बातें हमारे प्रेजेंटर्स के लिए लिखी और अपनी बात हम तक पहुंचाई तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे कार्यक्रम भी पसंद आ रहे हैं, स्पेशली आप शाम के समय के श्रोता हैं।

जो 6 बजे से 7 बजे सुनते हैं मैसेज मसाला मिक्स, और 8 बजे म्यूजिक मस्ती, आई थिंक वो उसी वक्त आते हैं तो दिन वाले प्रोग्राम्स आप शायद व्यस्तता के कारण नहीं सुन पा रहे होंगे। शो बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, डॉली ने एक बार फिर से मैसेज किया है। इसके अलावा गुड आफ्टरनून लिखते हैं, कह रहे हैं आपके हर कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगता है और मैं नियमित सुनता हूँ, नाम आप अपना क्यों नहीं लिखते, नाम आपका पिछले मैसेज में जो लिखा है। बागेश गोरखपुर यूपी से, बागेश्वर निशांत, राइट, तो हर मैसेज के साथ नाम लिखा करें जनाब, इतना समय नहीं होता है और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। उमेश कुमार का ख्याला से मैसेज आया है, नमस्ते, प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं लेकिन मैसेज शामिल ना करके प्रोग्राम का मजा किरकिरा कर देते हैं। बॉलीवुड ट्रेल्स में रंजन जी तो एक दो मैसेज ही शामिल करते हैं। ओके, आपका नाम है उमेश कुमार, कौन से मैसेज शामिल करने के लिए आप कह रहे हैं? बॉलीवुड ट्रेल्स में थोड़ा क्लैरिटी के साथ बोलिए ना, एक दो कौन सा मैसेज? बॉलीवुड ट्रेल्स में हम जो सरताज बनाते हैं ना सर, उसके अंदर क्या होता है कि एक ही को बना सकते हैं, तो बाकी सब जिन्होंने अगर सही जवाब भी दिए हैं तो सबके अगर हम नाम लेने लग जाएंगे तो फिर जिनको सरताज बनाया उनमें और जो नहीं बने उनमें फर्क क्या रह जाएगा? खैर, आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, आपकी बात बहुत अच्छी लगी, इसी तरह से बिंदास मैसेजेस करते रहिए। समय अब ज्यादा नहीं है, मेरे ऑलमोस्ट जाने का समय हो गया, लेकिन फिर भी कुछ मैसेजेस साथ साथ दूंगा। दिवेंद्र इंगती लिखते हैं कार्बी एंगलोंग असम से, एफएम रेनबो में एक से बढ़कर एक आरजे हैं और प्रोग्राम भी एक से बढ़कर एक आता है। सभी आरजे से एक बात कहना चाहता हूं कि दिल से दिल तक सुनता हूं। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच।

जी अब हम आप लाख रोके हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब हमें जाना है। अगला कार्यक्रम आशियाना लेकर श्वेता हाजिर है स्टूडियो में, तो रंजन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात इन्हीं एयरवेव्स पर। बिंदास बोल में मेल लिखने के लिए एक बार फिर से ईमेल नोट कर लीजिए, feedback@fmrainbow@gmail.com। फिलहाल आपसे होगी मुलाकात, जब तक मिले तब तक रहिए खुश और सुनते रहिए एफएम रेनबो। टेक केयर, बिंदास बोल, दिल खोल, जी ले जरा, बाय।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर अब समय है इस वक्त के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को रवाना किया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह से आज पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर, जहां वो बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 75 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री केंजरापू अचनाडू ने आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फ्लूक्लोर वर्जीनिया एफसीवी तंबाकू की खरीद की प्रगति की समीक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देशन दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। जापान ओपन बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु वॉक ओवर मिलने से सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए रेनबो के साथ, प्रोग्राम शुरू होने वाला है आशियाना।

आकाशवाणी में ये वाणी जो अभी आप सुन रहे हैं वो है मस्त पलंग आरजे श्वेता की वाणी। प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ आपके लिए आशियाना, और आज आशियाना में मैं आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आई हूँ। हाँ जी, पता है आज क्या है? आज है शुक्रवार, और शुक्रवार होता है घूमने फिरने का दिन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में पूरे भारत में

कहां कौन सा ऐसा ड्रिंक होता है या ऐसा पेय पदार्थ होता है जिसकी वजह से हमें गर्मी में भी राहत मिलती है। तो चलिए आज घुमाऊंगी भारत के उन स्टेट्स की ड्रिंक्स के बारे में और उनके बारे में बताऊंगी भी कि आखिर वो पीने के बाद आप क्यों ठंडक महसूस कर सकते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, छाछ उनमें से एक है। उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसे पेय पदार्थ हैं वो बताने के लिए बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा सुनने के लिए।

और ऐसा ही कहना ही क्या उन भारतीय पेयों का, और मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कई पारंपरिक और ताजगी भरे ड्रिंक्स बनते हैं और पिए जाते हैं जो शरीर को अंदर से तो ठंडक रखते ही हैं, स्वाद में भी इतने लाजवाब होते हैं कि बस दिल करता है कि वाह एक के बाद एक गिलास पिए चले जाएं। भारत की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए हमारे यहाँ कई सारे ऐसे पारंपरिक और ताजगी भरे ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में आज हम करने वाले हैं एक छोटा सा सफर। सफर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज सिर्फ एक स्टेट के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, आज आपको भारत के कई स्टेट्स के बारे में बताऊंगी कि आखिर वहां पर गर्मियों में ऐसा कौन सा पारंपरिक ड्रिंक पिया जाता है। जानती हूँ नींबू पानी, मसाला छाछ और आम पन्ना सबसे ज्यादा फेमस है, पर पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह के बेहतरीन समर ड्रिंक्स का आनंद तो लिया जाता ही है। यहाँ कुछ सबसे खास और इतने अच्छे ड्रिंक्स की आपके पास मैं लिस्ट लेकर आई हूँ ना कि आप भी कहेंगे क्या बात है, हमारा भारत तो कितना रिच है हर एक मामले में। हाँ जी, आम पन्ना। आम पन्ना ये कच्चे आम, पुदीना और जीरे से बनता है जो लू यानी कि हीट स्ट्रोक से तो बचाता ही है और पेट को भी ठंडा रखता है। वहीं मसाला छाछ यानी कि मट्ठा, हाँ कई कई जगह से मट्ठा कहा जाता है स्पेशली पंजाब में, ये पाचन तो दुरुस्त रखने और शरीर को एकदम से हाइड्रेट करने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में जाएं, वहां के स्टेट्स में जाएं तो सत्तू का शरबत, शरबत मैंने कहा शरबत इसीलिए क्योंकि वहां इसको इसी नाम से बुलाया जाता है, सत्तू का शरबत। हाँ जी, शरबत होता है और ये शरबत जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ये भुने हुए चने से बनाया जाता है जो एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देता है और पेट को भरा भरा रखता है। तभी देखिए ना वहाँ पर कितनी गर्मी हो, चाहे बिहार की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, लेकिन जैसे ही गर्मी में बाहर निकलने वाले होते हैं तो घर से पहले ही एक गिलास सत्तू का शरबत सत्तू का शरबत पी के निकलते हैं। और ये जो दिल है ना, ये एक छोटी सी आशा हमेशा बनाए रखता है कि ऐसे खाने पीने की चीजें हमारे भारत में हर जगह मिलती है, तो क्यों ना अगर हम जिस स्टेट में रहते हैं वहीं पे मिल जाए तो। पर कोई बात नहीं, थोड़ा घूमने का भी तो आनंद लीजिए, दिल्ली और NCR से बाहर जरा निकलिए, पूरे भारत को घूमिए, इसी बहाने घूमिए कि चलिए वहां के खाने पीने को भी ट्राई करें।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश

0: में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: FM रेनबो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मस्त पलंग आरजी श्वेता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आशियाना में आज मैं आपको घुमा रही हूँ कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स भारत के जहाँ पर आपको गर्मियों के लिए स्पेशल ड्रिंक्स मिल जाते हैं, जो आपको गर्मी में एकदम से ताजगी देते हैं। और यहाँ के ये पारंपरिक ड्रिंक्स होते हैं, बिल्कुल भारत में, मतलब शायद दुनिया का इकलौता देश है जहाँ लगभग हर राज्य का अपना एक खास ग्रीष्मकालीन पेय है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से ही यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो इसी वजह से राहत पाने के लिए अपना अपना शरबत या शीतल पेय होता था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर स्टेट का अपना अपना ये शीतल पेय क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की अपनी वनस्पतियाँ, वहाँ की अपनी जलवायु, वहाँ के रीति रिवाज, इन सब से जुड़ा हुआ होता है वहाँ का ये स्पेशल ड्रिंक। चलिए दक्षिण की तरफ आपको लेके चलती हूँ। दक्षिण भारत में पारंपरिक ग्रीष्म ऋतु के पेय पदार्थों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नन्नारी शरबत होता है, जो भारतीय सरस परिला से बना एक ठंडा ड्रिंक होता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा फेमस है गुलाब का दूध और गुलाब का शरबत। और वहीं चेन्नई से बेंगलुरु तक शहरी शरबत की दुकानों पर खूब बिकते हैं। और पानागम, गुड़, अदरक, इलायची से बना ये एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक होता है, ठंडा ठंडा ड्रिंक होता है। राम नवमी का प्रसाद पेय भी है ये, बिल्कुल राम नवमी को ये एक तरह से प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। और मसालेदार छाछ दक्षिण भारत के हर घर में दोपहर के खाने के बाद एक तो मतलब बहुत ही अभिन्न अंग है, वो तो लेना ही मस्ट है।

चलिए लिए चलती हूँ आपको बंगाल और उसके आसपास के स्टेट की तरफ। बंगाल और उसके पूर्वी क्षेत्र में अपनी अलग ही शैली है, पता है, बेल शरबत जो ठंडी बेल से बनता है और कलकत्ता की गर्मियों का एक क्लासिक ड्रिंक है, गोंदोराज लेम्बू। हाँ, ये नाम बड़ा सुना सुना सा लगता है ना। एक बहुत ही खुशबूदार देसी नींबू होता है और एक खुशबूदार एकदम शीतल ठंडे ठंडे ड्रिंक में बदल जाता है, जिसे कोलकाता के घरों में धार्मिक महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ आम पोरा शरबत जो होता है वो भुने हुए कच्चे आम से बनता है, जो आम पन्ना का ही एक धुएंदार रूप है। और यहाँ पर इन ऐसे ऐसे पेय परोसे जाते हैं, ड्रिंक परोसे जाते हैं, जिनका स्वाद इतना सुगंधित होता है कि अन्य जो जगह है, जो अलग अलग जगह हैं, क्षेत्र हैं, वहां ऐसा स्वाद कहीं पर भी नहीं मिल पाता है।

वैसे कभी आपने अनसुना सा सुना ही होगा वैसे ये कि चाय से भी थोड़ी गर्मी मरती है। कश्मीर की बात करो तो दोपहर की चाय उल्टी, शीत चाय ठंडी। हाँ जी, ये ही है कश्मीर की गर्मियों की जो ड्रिंक है वो संस्कृत सूक्ष्म है। और वहाँ की जो फेमस गुलाबी दोपहर की चाय है जुलाई में ठंडी परोसी जाती है, जबकि यखनी से बनी छाछ के पेय जो है वो गर्म महीनों में दिखाई देते हैं। ये शरबत की परंपरा से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट ठंडे पेय की परंपरा है, जो इस बात की याद दिलाती है कि भारत में यहाँ पर समर में एक अलग ही आपको अंदाज देखने को मिल जाएगा, हर एक क्षेत्र में अलग अलग। मध्य भारत की बात करूँ तो वहाँ सत्तू शरबत और बेलपत्र का कूल मिलता है। और अब बात करते हैं भाई उत्तर भारत में, हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठंडाई है, खस शरबत है, शिकंजवी है। उत्तर भारत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, दिल्ली का भी मशहूर गुलाब और जड़ी बूटियों से बना सिरप वो भी आपको बहुत मिल जाएगा। दूध और पानी के साथ गुलाबी रंग में रंग कर एक अनोखा ही पेय बन जाता है। इलायची, सौफ और बादाम से बना एक ठंडा पेय होता है जो होली में अधिकतर बनता है, लेकिन उसे गर्मियों में भी जरूर पीते हैं। खस शरबत की बात करूं तो खस की जड़ों से बनता है और एक गहरा हरा रंग क्लासिक ड्रिंक है जो ठंडक देता है। जीरा, सेंधा नमक से बना पंजाबी नींबू पानी शिकंजवी, ये कैसे हम भूल सकते हैं। भारत में मिलने वाले शरबतों की सूची में अकेले उत्तर भारत ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रोग्राम का टाइम कम रह जाएगा लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि हमारे पास फिर इसके थोड़ी देर में ही होगा स्पॉन्सर प्रोग्राम 2:30 बजे से। हाँ जी, ये सारे ड्रिंक्स जन्नत दिखा देते हैं, इतनी गर्मी में हमें ठंडा ठंडा कूल कूल कर देते हैं।

आज के आशियाना में बस इतना ही, और अब हमारा वक्त हो गया है हमारे स्पॉन्सर प्रोग्राम का, जो है NCERT से। तो इसके लिए आप इंतजार कीजिए और सुनिए, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डोडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
1: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
1: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
1: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
1: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया। इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक

0: आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
1: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है, जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना, जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहाँ से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल

0: तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
0: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
0: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
0: जी।
1: देखो, विशाल और शांत महासागर एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
0: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
0: अच्छा?
1: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
2: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
1: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
0: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान है। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
1: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
0: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
0: अच्छा तो ये बात है।
1: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15

0: हजार चोटियां हैं जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनिंकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।

0: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
1: आजा, आजा, आजा।
0: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
2: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
0: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
2: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
0: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
0: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा?
0: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
0: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। हाँ, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी

0: इतनी मामूली सी चुड़िया कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: Hello?
1: Good afternoon.
0: Hello, Minister, sir.
1: Am I audible?
0: Hello, sir. हम बनाइए असम से बोल रहे हो बिल्डर का सेंटर ही
1: Okay, thank you for calling in. कैसे हो आप?
0: जी सर ठीक है हम दुकान में बैठ के बस गाना सुन रहे सर
1: खूब खूब बताइए आज व्हाट सॉन्ग कैन आई प्ले फॉर यू?
0: सर
1: आज आपके लिए क्या गाना बजाऊं? आप बताइए।
0: जी सर हमको शकीरा का जो भी एक गाना सुनाने से हो जाएगा सर हो
1: शकीरा का जो भी गाना होने से भी हो जाएगा ना?
0: जाएगा
1: ठीक है ठीक है। अच्छा मैं एक गाना बजा दूंगा आपके लिए, अंडरनीथ योर क्लोथ्स। इट्स कॉल्ड अंडरनीथ योर क्लोथ्स। आई होप दैट विल डू।
0: हम डिलीगेट करना पड़ेगा सर
1: जी।
0: डिलीगेट करना पड़ेगा 10 किलो सर
1: ओके ओके डेडिकेट करिए करिए आप।
0: सर हम लोग का है अमल सोदर है साइको मुंडा है रमेश
1: ओके
0: पत्रा है रुखुबिला मिश्रा है योगेंद्र
1: ओके
0: रंगती है
1: ओके
0: हितेंद्र दास है सुनीता बसुमतारी अंजलि बसुमतारी दिवासी हजरेका
1: हाँ
0: सब की भी है और आपको भी सर धन्यवाद
1: ओके थैंक यू।
0: सर।
1: ठीक है ऑल राइट एंजॉय करो आप ये गाना
0: जी
1: अंडरनीथ योर
0: सर
1: क्लोथ्स बाय शकीरा।
0: जी सर
1: बाय बाय।
0: बाय बाय।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: Well, my dear friends, I'm Mikhail Lagode. Next caller, Taki Ase. Hello.
1: Jai Mata Di.
0: Jai Mata Di. Buran
1: Verma. Mera naam hai Puran Verma. Aur main aapse baatchit kar raha hoon. District Jaipur, Rajasthan. Gaon ka naam Anjwal Gubla.
0: Ji, Buran Verma ji, program mein swagat hai. Aur bataiye aaj kaise din raha?
1: बस सर बढ़िया रहा। वो जब आकाशवाणी कोलमा में कॉल लग जाता है तो और भी अच्छा हो जाता है।
0: क्या बात है। और बताइए आज का मतलब कौन सा लगी सुनना चाहूंगा। फिल्म का नाम बताइए।
1: जी सर, फिल्म का नाम रहेगा सर जीत।

0: जीत जीत
1: ओके गीत या जीत
0: जीत
1: जीत ओके और कौन सा वाला गीत
0: उसमें गाने के बोला ये हो नहीं सकता ये गाना है उसमें
1: जीत नहीं उसमें तो ये हो नहीं सकता वाला अलग होगा
0: अच्छा
1: जीत में मैं देखता हूँ सिर्फ एक गीत यहाँ में है 11 और 11 करके एक गीत है बस विनोद राठौर और अलका याग्निक का
0: एक ही इसमें
1: बस सिर्फ एक ही है
0: चलो पर ये गीत बजा दीजिए
1: ओके और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा
0: जी मैं नाम भी लेना चाहूंगा और श्रोताओं को बोलना भी चाहूंगा इस बारे में कार्यक्रम के बारे में
1: क्या
0: कि न्यूज के माध्यम से
1: जी
0: और डीटीएस के माध्यम से और नागालैंड के श्रोताओं के पास रेडियो पे कार्यक्रम जा रहा है
1: जी
0: तो मैं ये कहना चाहूंगा श्रोता से कि जो बाहर के श्रोता आते तो कृपया नाराज ना हो क्योंकि इसमें ये रेडियो आकाशवाणी है तो ये एक का नहीं है ये सबका है सर
1: जी
0: तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें क्योंकि आप इतना अच्छा कार्यक्रम करते हो तो क्योंकि ये तो देखो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए जैसे आकाशवाणी कोई माँ के श्रोता हो कहीं भी कॉल लगा सकते हैं सर
1: जी
0: तो ये कुछ श्रोता पिछली बार मैंने सुना था बोल रहा था कि सिर्फ नागालैंड का ही कॉल लो आप ये नागालैंड के कॉल आने चाहिए तो मैं यही कहना चाहूंगा श्रोताओं से कि बस अपनी एकता बनाए रखिए और आकाशवाणी कोई माँ के साथ जुड़ी रही है क्योंकि अगर आप भेदभाव करेंगे तो शायद कुछ क्योंकि आप तो कुछ नहीं करेंगे सर पर हमको दुख होगा क्योंकि ये कार्यक्रम शायद आप बंद ना कर दे क्योंकि श्रोता इतने जुड़े हैं
1: जी।
0: सब पसंद करते हैं बस कुछ श्रोता है जो बाहर के श्रोता को देख के परेशानी होती है तो इसलिए कहना चाहूंगा इस आकाशवाणी कोई माँ के साथ ऐसे ही प्यार प्रेम बनाए रखे और कोई किसी का भेदभाव ना करे बस
1: ठीक है थैंक यू सो मच और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा
0: जी सबसे पहले आप हैं
1: जी थैंक यू
0: और मेरा दोस्त राकेश है भगवान सिंह जी है अभिनाथ जी है रमेश प्रजापति जी है रमेश पात्र है गोल्डी भाई है अमल है विमल है और जितने भी कॉलर लाइव आने वाले जो बाहर के श्रोता कुछ कुछ होते हैं ना जो कॉल सुन के उनके लिए खास कर रहेगा ये गाना
1: ओके ठीक है थैंक यू सो मच पुरान सिंह पुरान वर्मा जी थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल और ऐसे ही बनाते रहना और
0: थैंक यू सर धन्यवाद और जो कुछ गलती अगर बोलने में हो गई तो सर माफ कीजिए आप भी होता हूं
1: नहीं नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है
0: थैंक यू
1: सर ओके यू वेलकम बाय तो मेरे फ्रेंड्स अमी खलनागा रेगुलर लिसनर ढकिया से पुरान वर्मा राजस्थान ब्रा और ताही रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमी खान हुनी अब जीत फिल्म रा विनोद राठौर और अलका याग्निक अवस्थे म्यूजिक दिस इन नदीम और श्रवण लिरिक्स समीर हुनी के नाम जो कर दिया और ताई नाम लॉस ऑफ के टू गीत डेडिकेट कर दिए से

0: Well, my dear friends, we have the next caller with us. Hello?
1: Hello?
0: Hello, who is on the line?
1: Prem Singh Sisodia, Gram Bachhoda, Tehsil Nagda, Jila Ujjain se.
0: Okay, Prem Singh ji, program mein swagat hai. Aur bataiye, aaj ka din kaise raha?
1: बहुत ही अच्छा दिन गया और आपसे बात करके अभी और भी अच्छा लग रहा है.
0: क्या बात है. और बताइए आज का कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा. फिल्म का नाम बताइए.
1: जी फिल्म का नाम है विश्वात्मा.
0: विश्वात्मा.
1: हाँ जी
0: मैं देखता हूँ.
1: जी हाँ और आपको बताऊँ अभी हम बगीचे में ही बैठे हैं. हमने गार्डन लगा रखा है घर के पीछे. हाँ जी और आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं.
0: क्या बात है. और क्या क्या लगा हुआ है गार्डन में.
1: इसमें है अमरूद के पेड़ है, ऑरेंज का है, आम के हैं, सीताफल के हैं, चीकू के पेड़ हैं और सब्जियां भी लगा रखी है हमने.
0: जी
1: हाँ जी
0: अच्छा
1: सब्जियों में है.
0: हाँ विश्वात्मा फिल्म से सिर्फ एक गीत मौजूद है इधर मेरा म्यूजिक बैंक में. सात समुंदर समुंदर पार सतना सरकम का.
1: हाँ तो ये तो सुनना है. सात समुंदर पार.
0: क्या बात है.
1: सात समुंदर पार हमें आपके पीछे पीछे आना है. कोई मना गलाइन में.
0: ठीक है. और किसी का नाम लेना चाहूंगा.
1: भगवान सिंह परमा, लोकेन वर्मा, आशुतोष अविना, संगीता जी, अमल बसमतारी, विमल बसमतारी, रमेश पात्रो और भाई कौन मुंडा
0: जी.
1: जी और हमारा एक ग्रुप बनाया हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप के सुनील झा और रमेश टेलर.
0: ओके
1: जी
0: तो ठीक है.
1: हाँ सर
0: जी
1: ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट रहेगा. तनुश्री को भी भूल गया था.
0: थैंक यू
1: जी.
0: तो ठीक है प्रेम सिंह से सुधिया आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग.
1: जी थैंक यू सो मच.
0: यू वेलकम. बाय. तो माय डियर फ्रेंड्स ब्रेम सिंह ससोदिया उज्जैन मध्य प्रदेश पर दाहे रिक्वेस्ट को लगा गीत होने वह सतना सरगम अवस्थे म्यूजिक दिजे विजुषा लिरिक्स अनंत बक्सी फिल्म से विश्वात्मा.

0: Well, my dear friends, I'm going to the next caller. Hello. Hello.
1: Hello, Namaskar.
0: Hello, Namaskar, Rakesh.
1: जी राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश प्रोग्राम में स्वागत है। और पता है आज का शिमला का मौसम कैसा रहा?
1: शिमला का मौसम बिल्कुल साफ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
0: ओके क्या बात है। और पता है इसके साथ आप कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: दिल जले है।
0: दिल जले है
1: जी।
0: और पता है कौन सा वाला गीत?
1: उसमें जो अभी जो पूरन वर्मा का कॉल आया था
0: जी,
1: तो वो कह रहे थे ये हो नहीं सकता।
0: ये हो नहीं सकता। यस
1: हाँ हाँ। तो ये गाना चला दो, क्योंकि ये पूरन वर्मा जी भी सुनते थे, तो उनके लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके और किसी का नाम?
1: सबसे पहले तो पूरन वर्मा है, अविनाश तेली है, भगवान सिंह परमार हैं, और तनुश्री हैं, और महाराष्ट्र और अमल है, और विमल बसमाचार्य हैं, रुकुमिला मिट्टा हैं, और तमाम सुनने वाले श्रोता इन सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग। ओके
1: जी जी जी जी धन्यवाद।
0: यू आर वेलकम। बाय
1: बाय।
0: तो माय डियर फ्रेंड्स Ragesh from Shimla, Amikhal Nagar regular listener thaki ase, tai request kor laga geet khuni hobo Dil Chale film ra Udit Narayan Awaste. Music design no Malik, lyrics Javed Akhtar, aur tai to ki ticket kru diye se tai naam lo Soke.
2: वो तो
3: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
3: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
3: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
3: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
4: होने को तो कुछ भी हो सकता है।

0: Well, my dear friends, next caller আমি এখন আমাদের থাকি আছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো
1: হ্যালো
0: হ্যালো কোন কই আছে?
1: জি মেন রমেশ প্রজাপতি, গ্রাম বায়া, তহসিল রেহটি, জেলা সিওর, এমপি সে বল রহা হুম।
0: ওকে রমেশ জি, প্রোগ্রাম মে স্বাগত হ্যায়। অর কেসে হ্যায়?
1: মে আচ্ছা হুম, গরমি লাগ রহি থি তো আবি থোড়া সা পানি আয়া হ্যায়।
0: আচ্ছা,
1: ঠান্ডক হো গই হ্যায়।
0: ক্যা বাত,
1: ঠান্ডি ঠান্ডি লহর চলনে লাগি।
0: ओके, और इसके साथ कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: संगम फिल्म है क्या?
0: संगम है
1: हाँ।
0: उसमें से कौन सा वाला गीत?
1: वो बुड्ढा मिल गया, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया।
0: बुड्ढा मिल गया, संगम, संगम फिल्म से। संगम, संगम में ये है बोल रहा था बोल, एक है
1: तो वो ये सुना तो बोल रहा था बोल संगम होगा।
0: अच्छा ओके, और नाम लेना चाहता
1: हूँ। ये गाना सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: थैंक यू।
1: फिर हमारे मित्र है भगवान सिंह परमार है
0: जी,
1: गजराज लोधी, केसी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल, प्रेम सिंह सिसोदिया है
0: जी,
1: और पूनम जी है कानपुर से, तनुश्री बिटिया है महाराष्ट्र से
0: जी,
1: और शिवा शिवा है विदिशा से,
0: ओके,
1: और रमेश पात्र है असम से है, और अमल भस्मकारी, बिमल भस्मकारी, रमेश पात्र जी।
0: ओके, थैंक यू।

0: सो मच रमेश जी, आप से बात हुआ अच्छा लगा, और सुनो आपका रिक्वेस्ट।
1: धन्यवाद।
0: ओके, वेलकम बाय। माय डियर फ्रेंड्स, अमी खालनगर रेगुलर लिसनर थकी आज है रमेश प्रजापति मध्य प्रदेश पर तहर रिक्वेस्ट हुआ लगा गीत अमी खान हुनी अब संगम फिल्म रा मुकेश और जयंती माला लगा वास्ते म्यूजिक दिस इज शंकर जय किशन लिरिक्स नसूर।

होगा बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: क्या होना क्या सताते हो, होगा होगा होगा।
2: Well, my dear friends, আমি কানি একটা টাইমলেস মেলোডি শুনি থাকিছে। এতিয়া আমি খালি গোটেই নেক্সট কলার থাকি আছে। হেল্ল' হেল্ল'

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की

0: जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
0: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
1: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी

0: महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen powered train from Jind. Prime Minister says Centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress. He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज

संकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही

0: sob sorkar health centers te bp laga free check up treatment aro kal phal thakibo laga modop ki ase bp laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-116-6666 call koribi
1: bp haribo desh jitibo
2: kitu jankari ntep bar ki ase हेलो
3: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
5: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
2: सर इतने कहाँ से
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
4: अरे
2: काट दिया
6: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
2: फ्रॉड
6: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. Apni khan sobke program ni swagat kori ase. Akashvani Kohima FM Tragban 103 MHz te. Apni khan laga host aru dost arjatam jan logo de. Well, my dear friends, as the evening settles and the world is quieter now, let us take a nostalgic journey through one of Bollywood's most melodious decades. 1970s laga kisman geet apni kan gyani diya hobo aru aji laga selection to hole ekta gentle heartfelt aru timeless ekta perfect for unwinding after a long day ami kan huni hobo so my dear friends whether you are you know taking rest after the long day's work nohile bi kothe thaki ase apni kan sobi take a deep breath relax and let this evergreen melodies fill your evening with peaceful and beautiful memories poila gita mikan huni hobo anti 1975 sal laga film ra Lata Mangeshkar aro Kishore Kumar laga waste one of Bollywood's most profound duets amikan huni hobo aro yate music dise RD Parman lyrics Gulzar huni kina enjoy korbi ekta masterpiece which beautifully portrays the emotions of love separation and acceptance